का शुक्रिया अदा करे। अगरचे कई नेमतें इंसान की ज़िंदगी में, जब सुबह इंसान उठता है तंदुरुस्ती भी उसके लिए एक नेमत है, कामयाब होना भी उसके लिए एक नेमत है और एक नई ज़िंदगी भी उसकी नेमत है। लेकिन पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं इन सारी नेमतों में सबसे बड़ी अफजल नेमत अल्लाह तबारक व तआला की पहचान है, अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को अता की है। ये वो नेमत है, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जिस नेमत के लिए, हासिल करने के लिए हमें दुआ का हुक्म दिया है। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की मारिफत की दुआ कर लो, परवरदिगार तू ही मुझे पहचान वा कि तू कौन है, मेरी मुझे नेमत देने वाला कौन है, मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने वाला कौन है, मेरी ज़िंदगी को कामयाब बनाने वाला कौन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि इस मारिफत के नतीजे में इंसान ये जान लेता है कि मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में इस बात की तरफ इशारा किया कि मिन आयन, जब अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल कर लेता है तो बंदे को पता चल जाता है, ये चल जाना चाहिए कि वो कहाँ से आया है, इस दुनिया में किस लिए आया है और इस दुनिया से वो किस डायरेक्शन और किस रुख की तरफ जाना है, उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है। भेजा क्यों गया, बंदा अबस तो नहीं, बेकार तो नहीं, जब भेजा गया है तो कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसे इस दुनिया में पूरा करना है और एक फिर एक बार लौट कर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाना है। मीन आयन इला आयन, तमाम अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत का खुलासा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी फितरत में रखा है, हमारे नेचर में रखा है, हमारी इंस्टिंक्ट में रखा है। किसी किताब, किसी खतीब के का खुतबा, किसी जाकिर के जिक्र की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को जानने के लिए थोड़ी देर इंसान अपनी नेमतों जो उसकी ज़िंदगी में उसका एहसास करे तो इंसान को पता चल जाएगा कि अल्लाह ने सारी नेमतों को उसे अता की है। पहली जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अर्रफनी नफ्सा, शुक्रिया अल्लाह की बारगाह में अदा करे, उसने हमें मारिफत अता की। अगर ये मारिफत ना होती, द सेकेंड पार्ट बहुत खूबसूरत है, लम यतरुकनी उमियान अल्कल्ब, अगर दिल में अल्लाह ना हो तो दिल मर जाता है, दिल ब्लाइंड हो जाता है, दिल की हयात, दिल की ज़िंदगी और दिल की बीनाई जो नज़र आती हैं चीज़ें दिल से, वो अल्लाह के मारिफत के नतीजे में। इसलिए उलमाए कराम ने गुफ्तगुए मारिफत का फ़ायदा क्या है, सुकून है, यकीन है, तवक्कुल है, रिदा है, ये वो चीज़ें हैं जो मारिफत के नतीजे में बंदे को अता कर दी जाती हैं। दूसरी नेमत जिसका हमें दोहराना है, रिपीट करना है, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी मिन उम्मते मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्रिया अदा करे, परवरदिगार ना तना तूने अपनी मारिफत मुझे अता की, मुझे आखिरी नबी की उम्मत में से करार दिया। बड़ी नेमतें हैं उस इंसान के लिए जो आखिरी नबी का उम्मती बन जाता है। पैगंबर इस्लाम क़यामत के दिन उस बंदे पर फख्र करेंगे जो बंदा पैगंबर इस्लाम की उम्मत में से है, हत्ता पैगंबर इस्लाम कहेंगे मेरे उम्मती कहाँ है, आओ मैं उनकी शफात करने के लिए तैयार हूँ। उम्मत मोहम्मद में वाक़ हो जाना अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। ये सिर्फ फख्र नहीं है, कि सिर्फ ये नहीं कि इंसान उम्मती बन जाए और वहीं पर इंसान की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती, नहीं, उम्मती होना दर हकीकत जिम्मेदार होना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं जब वो पैगंबर इस्लाम का उम्मती बन जाता है। बहुत सारी नस्बतों पर हम फ़ख्र करते हैं दुनिया में, नहीं, कभी कभार हम अपने ख़ानदान पर फ़ख्र करते हैं, कभी मुल्क पर फ़ख्र करते हैं, कभी ज़बान पर हम इफ्तिखार करते हैं, प्राउड फील करते हैं, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं तो फ़ख्र का एहसास होता है, अपनी पर्सनालिटी पर इंसान प्राउड फील करता है। सारी नस्बतें अच्छी चीज़ें हैं, इनमें कोई इनकार नहीं है। सबसे बड़ी नस्बत जो कनेक्शन इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है वो पैगंबर इस्लाम से जुड़े रहना और पैगंबर इस्लाम की उम्मत में शामिल होना है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी मिन उम्मते

बेमौसम के फल रखे हुए हैं। नहीं, अगर यहाँ हमारे यहाँ बेमौसम का फल आता ना, अनसीजनल फ्रूट में टेस्ट नहीं होता, लेकिन ये जो बेमौसम के फल आए थे हजरत मरियम के पास, टेस्टी थे, खुशबू आ रही थी उससे। हजरत जकरिया को ताज्जुब हुआ, अन्ना लके हादा, ये रिस्क कहाँ से आ गया, ये फ्रूट कहाँ से आ गए। हजरत मरियम ने कहा, हुआ मिन इंदिल्लाह, तबारक व तआला, अल्लाह रिस्क का इंतजाम करने वाला। ये मिसालें हैं हमारे लिए, रिस्क का इंतजाम करने वाला अल्लाह, हमारी तरफ से कोशिश और नतीजा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। और चौथी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सतर दुनूबी वलम यफ़दहनी बैन अल खलाइक। सबसे बड़ा करम अल्लाह तबारक व तआला का बंदे पर यह है कि अल्लाह ने बंदे के गुनाहों पर पर्दा डाल रखा है। वो सत्तारुल उयूब है, पहले गफ्फारुद दुनूब है, बाद में, पहले उसने छुपाया और उसके बाद जब बंदा माफी मांगता है तो फिर उसे माफ कर देता है। वलम यफ़दहनी बैनल खलाइक, उसने मुझे लोगों के दरमियान रुस्वा नहीं किया, दलील नहीं किया। क्यों? रात के बाद सुबह इस नेमत को याद करें, रात की तारीकी में बंदा बड़े गुनाह कर जाता है, बंदा डिविएट हो जाता है। जितने गुनाह हैं, सूरह फलक की तफसीर में बाज़ हमारे कमेंटेटर्स ने कहा, रात का अंधेरे का फ़ायदा कुछ लोग नमाज तहज्जुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अंधेरा छा जाता है, नाइट हो जाती है, डार्कनेस फैल जाती है, तो कुछ लोग मुसल्ला बिछाते हैं अल्लाह अकबर कहने के लिए, नाइट प्रेयर्स के लिए। कुछ लोग अंधेरे का फ़ायदा उठाते हैं चोरी करने के लिए, कुछ लोग अंधेरे का फ़ायदा उठाते हैं डाका डालने के लिए, कुछ अंधेरे का फ़ायदा उठाते हैं लूटने के लिए, नुकसान पहुँचाने के लिए। रात की तारीखी में बंदा कितने गुनाह कर बैठा, सुबह उठते ही अल्लाह के बारगाह में गए, परवरदिगार मेरी मुझसे खता हो गई, कम से कम मेरे गुनाह लोगों को पता तो ना चले। वलम यफ़दहनी बैनल खलाइक, मुझे जलील नहीं किया तूने लोगों के दरमियान, मेरी आबरू रख ली, मेरी इज्जत को तूने बाकी रख लिया। इसके लिए एक अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हक बनता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सतर दुनूबी, इसका इसकी ज़कात क्या है? अल्लाह ने मेरे गुनाहों को छिपा दिया, मेरे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया, इसकी ज़कात क्या है? दो चीज़ें बताई उलमाए कराम ने। पहली ज़कात ये, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में शुक्रिया अदा करो, तूने मेरे आइबों को छिपा दिया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। और दूसरी ज़कात ये है कि मैं भी अल्लाह की इस सिफत को अपनाऊं, लोगों के ऐबों पर पर्दा डालता चला जाऊं, लोगों के ऐबों पर पर्दा डालता चला। सुबह सुबह उठी मेरी आंख खुली, ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? किसी के गीबत, किसी पे तोहमत, किसी पे इफ्तरा, किसी के लिए गालियां, किसी के लिए ऐसे लफ्ज़ जो मेरा दिल गवारा नहीं करता, उनके पर्दों आइबों पर पर्दा डालना मेरी जिम्मेदारी। क्यों? मैं वहां से ले रहा हूं तो यहां मुझे देना। ज़कात यह है कि मैं लोगों के आइबों पर पर्दा डालता चला जाऊं। आज के दौर में ये मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है कि इंसान दूसरों के आइबों पर पर्दा डाले। लोग दूसरों के आइबों को उछाल कर लाइक्स हासिल करना चाहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ देकर फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं। अगर यही तरीका है तो ये तरीका तुम्हें कभी कामयाब बनाने वाला नहीं है। कितना खूबसूरत जुमला है, दूसरों के लिए कुआं खोदने वाले होशियार रहें, उस कुएं में सबसे पहले गिरने वाले तुम ही हो, तुम ही हो। अगर दूसरों को बदनाम करने की कोशिश करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला का, जब अल्लाह गैज में आता है, जब अल्लाह गुरूर में आता है, जो उसे ज़ेब देता है ज़ुल जलाल वल इकराम, फिर वो एक्सपोज कर देता है। कितने मुनाफिकीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, वरना तुम एक्सपोज हो जाओगे। एट द एंड अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक्सपोज कर दिया। ये जो आ रहे हैं या रसूल तुम्हारी बज़्म में, ये सब अच्छे नहीं हैं, इनमें कुछ मुनाफिक हैं। हो सकता पैगंबर इस्लाम ने कहा हो, परवरदिगार ये तो कलमा पढ़ते हैं, आवाज़ कुदरत आई, कलमा भी झूठा पढ़ते हैं, कलमा भी झूठा पढ़ते हैं, दिल इनके ज़बान के साथ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला एक्सपोज कर देता। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। और ये चार अलहम को याद रखिएगा, जब भी सुबह आँख खुले, परवरदिगार मुझे मारिफत अता करने का शुक्रिया, पैगंबर इस्लाम की उम्मत में करार देने का शुक्रिया, और मेरे गुनाहों पर पर्दा डालने

0: महफिल के तीसरे सीजन में एक अहम बात यह है, हमने खास डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम बनाए, फोकस था किस्से अंबिया पर। हमारी अजीज थिंक टैंक और कंटेंट टीम ने महफिल की, कुरानी मकामात को कलेक्ट किया, अलग किया और पूरी लिस्ट बना दी। फिर उन्हीं जगहों पर स्पेशल डॉक्यूमेंट्रीज शूट हुई मुख्तलिफ मुल्कों में। उनडॉस की नरेटर एक बासलाहियत फिल्म थिएटर और टीवी एक्ट्रेस हैं, मोहतरमा आजीता तुर्काशवन। दावत करता हूं वो स्टेज पर आए आप सबके जबरदस्त इस्तकबाल के साथ।
1: अस्सलामुअलैकुम
0: मोहतरमा, खुश आमदीद।
1: शुक्रिया, मैं भी सलाम पेश करती हूँ आपकी खिदमत में और मोहतरम असातज़ा महफिल के नाज़रीन की खिदमत में।
0: सलामत रहें। कहाँ गई थी इस बार, कहाँ का ट्रिप था?
1: हम असल में गारे असहाब कहफ गए थे और गार को करीब से भी देखा, और मेरा ख्याल है कि सभी इस किस्से से आशना है।
0: किस मुल्क में?
1: गारे असहाब कहफ तुर्की में है, शहर मिर्सिना।
2: माशाल्लाह।
0: वो एहसास और फीलिंग जो आप इस हकीकी माहौल में गईं, जिसका जिक्र खुद कुरान में हुआ है, कैसा था?

0: ये वाकया और ये इलाही मोजज़ा बहुत ही ख़ास था, चूँकि दास्तान असहाबे कहफ को हम सब ने सुना है, ख़ासकर जब उस पर सीरियल बनाया गया तो इसमें हमारी समझ और भी बढ़ गई। और मेरे लिए ये तो बहुत ही पुरकशिश था जो बचपन से ग़ारे असहाबे कहफ के बारे में सुनती आई हूँ, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ख़ुद वहाँ जा सकूँ और नज़दीक से ग़ार को देख सकूँ। और वो मोजज़ा इलाही जो इस ग़ार में पेश आया, मैं उसी जगह खड़ी होकर वो लम्हा महसूस कर सकूं। और ये सब निशानी है, हिकमत, अज़मत और मोजज़ा है इस किताब
1: का। आपके पीछे मोहतरमा तुर्काशवन पर्दे पर, ये वही एनिमेशंस हैं जो हमारी महफिल की टीम ने तैयार की है, और सच कहूं तो ये काम किसी भी फॉरेन प्रोडक्शन से कम नहीं है। ये सब कुरानी किस्सों के फोकस से बनाया गया है। तो मेरी दरख्वास्त है, जब आप असहाबे कहफ की कहानी सुन रहे हों तो इन तस्वीरों पर भी ज़रा तवज्जो रखें। यह पूरा दूसरा जहान एआई से बनाया गया है और आपको तारीख में और कुरान के किस्सों में पूरी तरह से ले जाता है। लुत्फंदोज हों, कोई और पॉइंट जो आप कहना चाहती हैं?
0: ज़रूर, मैं चाहूँगी कि हजागा खासमियान तशरीफ़ लाएँ और यहाँ असहाबे कहफ की कहानी सुनाएं, और मेरा दिल चाहता है कि मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँ, क्योंकि वो वाकई हर लम्हा हमारे साथ रहे, सब्र के साथ, हौसले के साथ। जो भी सवाल, जो भी पूछना था, उन्होंने पूरी मोहब्बत से उसका जवाब दिया।
1: हजागा कासमियान के लिए तालियां। कासमियान साहब, ये शायद नाजरीन का भी सवाल हो कि महफिल वालों को इन तारीखी मकामात पर किस हद तक भरोसा करना चाहिए।
2: देखिए, इन सब की मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। मसलन अगर हम हज़रत नूह की कश्ती की बात करें तो उसके निशान कोहे जूदी की ढलानों में भी हैं और आरारात के पहाड़ों में भी। और इसी इम्कान को हज़रत अल्लामा तबतबाई ने तफसीर अलमीज़ान में मज़ीद मजबूत किया है। हमारी मिसालें और भी हैं, जैसे बहर नजफ और दूसरे मकामात जिनका जिक्र मिलता है। लेकिन असल और अहम नुक्ता यह है कि मकसद ये नहीं है कि हम जिद करें कि बस यही जगह,
1: यहीं पर,
2: जी यही जगह है और कोई जगह नहीं हो सकती। असल में वो मकाम एक बहाना है ताकि हम ये बता सकें कि एक हकीकत वाकई मौजूद रही है। क्यों? क्योंकि कई बार कुरान में साफ पता भी दिया गया और फरमाया गया, इन्ना फीजालिका लायातिल मुतवस्मीन, यानी ये निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो तलाश करते हैं, तो वो जाकर उन आसार को हासिल कर सकते हैं। और असल में ये सब इलाही निशानियों का सिलसिला है जो अब तक,
1: लेकिन बहरहाल हम सबसे ज्यादा मुमकिन जगह पर गए थे।
2: जी, हम सब उसी जगह जाते हैं जहाँ ज्यादा इम्कान हो और उसी पर काम करते हैं।
1: आए चलते हैं किस्से असहाबे कहफ।

ये सब जवान थे, हालांकि वो उम्र के हिसाब से जवान नहीं थे, लेकिन चूंकि जवान मर्द थे इसलिए अल्लाह ने उन्हें जवान कहा। जब इंसान अल्लाह का सच्चा बंदा बन जाए तो अल्लाह उन्हें जवान कहता है। और इसी तरह आगाज होता है, इज अवल फितयत इलल कहफ फकालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरना रशदा।

तुम सोच रहे थे कि वो जाग रहे थे, जाग नहीं रहे थे, सिर्फ लग रहा था कि जैसे वो जाग रहे हों। वतहसबहुम अयकाज़ा, तुम सोच रहे थे कि वो जाग रहे हैं। वहुम रुकूद, वो सोए हुए थे। वतहसबहुम अयकाज़ा वहुम रुकूद। वनुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी वज़ातल शिमाल, अल्लाह उन्हें कभी दाई करवट करता कभी बाई करवट करता ताकि वो बेटसोर का शिकार न हो जाएं। 309 साल अल्लाह ही उन्हें दाएं बाएं करता रहा ताकि उनके जिस्म सलामत रहें।

0: 309 साल सोने के बाद जब ये बेदार हुए तो उन्हें खुद लगा कि शायद हम बहुत ज़्यादा सो गए हैं। उन्हें भूख भी बहुत लगी थी और कपड़े भी कुछ अजीब गरीब से लग रहे थे, जैसे उनमें कुछ तब्दीली आ गई हो। قال قائل منهم كم لبستم، कितना सोए؟ قالوا لبسنا
1: يوما او بعض يوم،
0: قالوا لبسنا يوما او بعض يوم، शायद एक दिन या आधा दिन। लग तो रहा है कि ज्यादा सो गए हैं،
1: चकरा गए،
0: एक दिन तो सोए होंगे।
2: कब लबिस्तुम،
0: तिलावत कीजिए।

उनकी पहली टेंशन यही थी। फलयंजुर अय्युहा अज़का तअमन, जाओ देखो पाक खाना मिल भी रहा है या नहीं। देखें ये बहुत अहम नुक्ता है। एक शख्स नबी करीम के पास आया और कहा मैं चाहता हूँ मेरी दुआ कबूल हो। आपने फरमाया रिज़्क हलाल, यानी पाकीज़ा खाना और हलाल रोजी की तलाश, यही वो चीज़ है जो असहाबे कहफ को असहाबे कहफ बनाती है। अभी बंदा शहर में दाखिल होता है, सब लोग उसे घूर घूर के देख रहे हैं। 309 साल गुजर चुके थे और उसके कपड़े भी बिल्कुल अलग जमाने के लग रहे थे। तौहीद की निशानियाँ भी जा बजा कायम हो चुकी थी। वो आंखें मल रहा है, मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ, मसला क्या है। इसी दरमियान वो सिक्का रखता है। लोग कहते हैं ये कौन सा सिक्का है, ये तो दकियानूस के ज़माने का है। यूँ उसका राज खुल जाता है, पकड़ लेते हैं, तुम कौन हो, मालूम हो जाता है ये उन्हीं गार वालों में से है। फिर पूरा शहर हिल जाता है, लोग उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। जिस खाने के लिए वो आया था उसी ने उसका राज खोल दिया। वो 309 साल सोए थे। गार में दाखिल होते ही ये बात वाजे हो जाती है कि दास्तान अब अपने अख्तिताम के करीब है। लोगों की भीड़ है, लोगों का हुजूम है, सब घेर लेना चाहते हैं और वो अल्लाह से दुआ करते हैं, परवरदिगार हमने अपना काम कर दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब हमारा सफ़र यहीं मुकम्मल हो जाए। और फिर वहीं उनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं। असल नुक्ता यह है, قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا। लोग आपस में मशवरत करते हैं, आखिर यादगार क्या बनाएं, आखिर यादगार क्या बनाई जाए, ये कोई आम लोग नहीं हैं, उनकी याद में कुछ बड़ा होना चाहिए। फिर वो लोग जो उनके ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझ गए थे वही कहते हैं, قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا, यानी यहाँ हमें मस्जिद बनानी चाहिए, चूँकि मस्जिद ही दकियानूस जैसे ज़ालिमों के ख़िलाफ़ असल मैदान मुज़ाहमत है। मस्जिद मुबारज़े की असल जगह है।

यही वो जगह है जहां दास्तान ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक बहुत अहम नुक्ता दरमियान में क़ुरान ने बयान किया है जो शान नुज़ूल से जुड़ा हुआ है। चूंकि पैगंबर अकरम से सवाल किया गया था क्यों मैंने कहा अहम है, दरमियान किस्सा कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि क़ुरान ने एक अखलाकी पैगाम दे दिया। ये हिस्सा बहुत अहम है। पैगंबर से कहते हैं कि आप हमें असहाब कहफ़ की दास्तान बताएंगे, फरमाया कल बताऊँगा। अगले दिन वही नहीं आई, उसके बाद भी नहीं आई, 15 दिन वही नाजिल नहीं हुई। लोग कहने लगे ये जनाब तो कह रहे थे कल बताऊंगा, तब यह आयत नाजिल हुई, वला तकूलन्न लशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन, कभी भी ये न कहो कि मैं कल ये काम जरूर करूंगा, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कहो कि अगर अल्लाह चाहे।

0: इसलिए इंशाअल्लाह हमेशा आपकी ज़बान पे रहना चाहिए। जो भी कहें, मैसेज भी भेजें, मैसेज भेज भी दिया हो तो आखिर में लिखें इंशाअल्लाह, भूलें नहीं।
1: बिल्कुल दुरुस्त।
0: इंशाअल्लाह यानी अल्लाह की मर्जी, यानी अल्लाह चाहे तो।
1: जबरदस्त।
0: ये थी दास्तान अस्हाबे कहफ।
1: बहुत शुक्रिया
2: एहसान,
1: इतनी ही जज्बाबियत के साथ। बहुत खूब,
2: जज़ाक अल्लाह
3: एहसान, माशाल्लाह।
1: और जाहिर है ये किस्सा तो बहुत तवील है, लेकिन यहाँ हमें बहुत मुख्तसर अंदाज में सुनाया कासमियान साहब ने। एक तफसीली पॉडकास्ट भी है, बल्कि कई पॉडकास्ट हैं, जिसमें अस्हाबे कहफ का पॉडकास्ट 4 एपिसोड में इस किस्से को हाजागा कासमियान ने तफसील से बयान किया है, हामिद शाकिर नजात साहब की खूबसूरत तिलावत के साथ। इन दोनों मोहतरम हजरात के एजाज में अच्छा, अब वो अंदरूनी कैफियत किस्से में, बिलाखिर आपने बतौर रावी सफर किया है उस इलाके तक, असहाबे कहफ की दास्तान क्या थी?
4: मेरे लिए ये सफ़र शुरू होने से बिल्कुल पहले एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया। शायद मेरी टीम के लोग इस बात से वाकिफ भी न थे। सफ़र से बस दो दिन पहले मेरी वालिदा को फालिज का शदीद दौरा पड़ा और वो कोमा में चली गई। इसी दौरान मुझे कॉल आई कि आपको फौरन इस सफ़र पर जाना है। और अजीब बात यह थी कि यह सफ़र अस्हाबे कहफ की कहानी के साथ था। गहरी नींद, लंबी खामोशी, और मैंने सिर्फ एक ही दुआ की, बस अल्लाह मेरी माँ को वापस कर दे, मुझे उसकी तरफ लौटा दे। और मैं सफ़र पर निकल गई। रात के वक्त जब सब लोग कहते थे कि चलें खाना खा लेते हैं, मैं बहाना कर देती कि मैं थकी हुई हूँ और होटल में रुक जाती। मैं वहाँ अकेली बैठकर रोती रहती, क्योंकि जो कुछ हुआ था उसने मुझे तोड़ कर रख दिया था। लेकिन अगली सुबह मैं खुद को संभाल लेती और बिल्कुल भी गिरोह को महसूस नहीं होने देती कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर जब मैंने पहली बार ग़ार में कदम रखा, वहाँ मैंने अल्लाह को गवाह बनाया और कहा, या रब, जिसमें तेरी रजा तेरी खुशनुदी हो वही हो। अल्हम्दुलिल्लाह जब सफ़र से वापस आई, मैं ये नहीं कहूँगी कि अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र कोमा से वापस आ गई। अलबत्ता अभी बेहिसी है, लेकिन डिस्चार्ज होकर घर आ गई हैं।
3: माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
4: मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस सफ़र में जितना आगे बढ़ती गई, जितना कुरान की उन आयतों को गहरी समझ के साथ देखा, मैं सिर्फ एक नतीजे पर पहुँची, तस्लीम इलाही, इरादे इलाही, ज़माने इलाही। और
1: आपकी वालदा के लिए शफाए कामिल व आजिल की दिल से दुआ है।
4: इलाही आमीन।
1: इंशाल्लाह पूरी तरह से सेहतियाब।
4: इंशाल्लाह।
1: आमीन,
2: आमीन,
1: आमीन,
2: आमीन।
1: बहुत शुक्रिया,
2: बहुत शुक्रिया,
1: हमेशा सलामत रहे।
4: आपका भी बहुत शुक्रिया।
2: उम्मीद है ये सिलसिला जारी रहे।
4: इलाही आमीन, इंशाल्लाह। और सच कहूँ, ये डॉक्यूमेंट्री वाकई बहुत पुरकशिश है। मुझे यकीन है आप में से हर एक को पसंद आएगी, क्योंकि हमने कुरानी तारीख के दिल में, यानी उस जमाने में वाकई सफर किया। ऐसी

0: दास्तानों और
1: बहुत
0: इलाही
1: उम्दा।
0: निशानियों के साथ जो पहले कभी यूं नहीं देखे गए। दुआ है ये मेहनत कबूल हो बारगाह
2: हमने तो सिर्फ चंद मनाजिर देखे और दिल वाकई मुतासिर हो गया। बहुत शुक्रिया।
0: मैं शुक्रगुजार हूँ।
2: सलामत रहें।
1: हमेशा खुश रहें। हमेशा सलामत रहें।
0: दिल से शुक्रिया।
1: बहुत शुक्रिया।